नमस्कार, 4EBFM 98.1 के साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। हमारे मलयाली दोस्तों के लिए अभी ओणम त्योहार का समय है। आप सभी पूकलम और सद्या में व्यस्त होंगे। हमारे सभी मलयाली श्रोताओं को ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके घरों में ऐश्वर्य और सफलता की वर्षा हो। चलिए अब एक भक्ति गीत सुनते हैं अनूप जलोटा की आवाज में।

आज के सुविचार में आपके लिए पेश है एक प्रेरक कहानी। एक गांव के बाहर एक सांप रहता था। वह रास्ते से गुजरने वाले लोगों को डस लेता था। धीरे धीरे उस सांप का आतंक इतना फैल गया कि लोगों ने उस रास्ते से आना जाना ही बंद कर दिया। उस दौरान एक संत उस गांव में आकर ठहरे और उन्हें उसी रास्ते से जब दूसरे गांव जाना था तब गांव वालों ने उन्हें उस सांप के बारे में बताया। परंतु संत ने कहा कि उनके पास एक मंत्र है जिससे सांप उन्हें डस नहीं पाएगा। जब संत उस रास्ते से जाने लगे तब वह सांप फुफकारता हुआ संत को डसने आ गया। संत ने अपना वह मंत्र बोला तो सांप चुपचाप उनके चरणों के पास आ गया। तब संत ने सांप से कहा कि अब किसी को डसना मत, हिंसा का मार्ग छोड़कर अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाओ। सांप ने संत की बात मानकर लोगों को डराना और डसना छोड़ दिया। लोगों का डर धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग रास्ते से आने जाने लगे। धीरे धीरे लोगों ने उस सांप को मारना शुरू किया परंतु सांप ने उन्हें डसा नहीं, तो लोगों की ऊर्जा और बढ़ी और सांप को घायल कर डाला। तब संत ने वापस आकर सांप को कहा, तुम्हें लोगों को ना डसने को कहा था ताकि लोगों को हानि ना हो, परंतु अपने आप को बचाना नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। तुम्हें अपनी रक्षा के लिए फुफकारना चाहिए। चलिए अब यह गीत सुनते हैं।

जिन श्रोताओं ने देर से ट्यून इन किया है उनका 4EB FM 98.1 के आज के साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड में तहे दिल से स्वागत करती हूं। मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। आज हम बातें करेंगे भारत के इंडी पॉप के सुवर्ण दशक 1990s के इंडी पॉप कलाकारों और गीतों के बारे में। हमारे श्रोताओं में जो भी 1990s किड्स हैं उनके मन में तुरंत ही कई इंडी पॉप कलाकारों के नाम और गीत आ गए होंगे, परंतु 1990s के पहले और बाद के जेनरेशन वाले शायद सभी इंडी पॉप आर्टिस्ट के बारे में नहीं जानते होंगे। इंडी पॉप कलाकारों में मेरी वन ऑफ द फेवरेट कलाकार हैं फाल्गुनी पाठक जी। फर्स्ट क्रशर्स और रोमांटिक पलों में हमने भी कई बार फाल्गुनी जी के गीत गुनगुनाए हैं। मैंने पायल है छनकाई और याद पिया की आने लगी जैसे गीतों को आज भी पसंद किया जाता है। इनके तो रिमिक्सेस भी बने हैं। चलिए पहले फाल्गुनी जी का ही गीत सुनते हैं।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Station sponsor.
2: Falguni Pathak ek local performer thi Gujarat mein. Ve navratri ke samay kafi shows karti hain. Unke geeton mein garba aur pop sab milta hai. Ve apne aap ko aam ki tarah manti hain. क्योंकि आम का सीजन है समर, उसी तरह फाल्गुनी का सीजन है नवरात्रि। डांडिया नाइट्स की रानी माना जाता है फाल्गुनी जी को। उनका अपना बैंड है ताथैया। फाल्गुनी जी बचपन से ही संगीत में पली बढ़ी हैं। घर में हमेशा रेडियो बजता रहता था। जब उनकी बहन शास्त्रीय संगीत सीखती थी तो फाल्गुनी जी भी दीदी के पास जाकर बैठ जाती थी। इस तरह शास्त्रीय संगीत का अभ्यास भी हो जाता था। वे अपने घर की छत पर जाकर जोर जोर से 50-60s के बॉलीवुड गीत गाया करती थी। तब उनके पड़ोसी अपनी फरमाइश के गीतों को गाने के लिए उनसे कहा करते थे। फिर आया उनका इंडी पॉप एल्बम गीत याद पिया की आने लगी, जिसके वीडियो में सरोज खान ने डांस कोरियोग्राफी की थी। चलिए अब वही गीत सुनते हैं।

एक और इंडी पॉप बैंड और कलाकार जो मेरे फेवरेट हैं वे हैं कॉलोनियल कजिन्स। इस बैंड के दो कलाकार हैं हरिहरन और लेस्ली लुइस। 1996 में उनका इंडी पॉप एल्बम चार्ट बस्टर्स था और इस एल्बम ने कई अवार्ड्स भी जीते हैं। लेस्ली जिंगल्स लिखा करते थे और उसी दौरान उन्हें कॉलोनियल कजिन्स बनाने का ख्याल आया। एक बार एक जिंगल की रिकॉर्डिंग के जैमिंग सेशन में लेस्ली और हरिहरन जैमिंग करते करते इंडी पॉप की दुनिया में चले गए। हरिहरन गजल और शास्त्रीय संगीत के मंझे हुए कलाकार हैं और लेस्ली के वेस्टर्न स्टाइल के कंपोजिशंस थे, तो दोनों के मिलन से बना कॉलोनियल कजिन्स। एल्बम के बाद उन्होंने फिल्मों में भी गीत गाए, कई अवार्ड्स पाए। चलिए उनका यह फेमस

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: आप सुन रहे हैं 4AB FM 98.1 का साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड, आपकी आरजे सीमा श्री कुमार के साथ। चलिए बात करते हैं सिल्क रूट की। इस बैंड के लीड गायक थे मोहित चौहान, गिटारिस्ट थे अतुल मित्तल, कीबोर्ड्स पर थे किम त्रिवेदी, पर्कशन पर थे केनी पुरी। 1996 में यह बैंड बना था, परंतु 2003 में यह डिसमेंटल हो गया। यह बैंड बना था दिल्ली में। कलाकारों ने फोक म्यूजिक और वेस्टर्न अकोस्टिक पॉप स्टाइल्स को मिलाकर अपने गीतों को बनाया। उनका पहला म्यूजिक एल्बम था

बूंदें और उसका आइकॉनिक गीत जो चार्टबस्टर बना वह था डूबा डूबा, जिसमें जेंटल फ्लूट और एकॉस्टिक गिटार का संगीत था। इस बैंड के स्प्लिट होने से पहले उन्होंने पहचान नामक एल्बम भी निकाला था। मोहित चौहान का गाया गीत तुमसे ही जब वी मेट फिल्म से काफी हिट रहा और मोहित को प्लेबैक सिंगिंग में भी सफलता मिली है। चलिए सुनते हैं बूंदे एल्बम का प्यारा सा गीत।

90s के इंडी पॉप का एक जाना माना नाम है सुनीता राव। वे इंडी पॉप स्टार तो थी ही, साथ ही वे एक प्लेबैक सिंगर, डांसर और स्टेज एक्ट्रेस भी हैं। धुआं एल्बम का परी हूं मैं वाला गीत उस समय सबकी जुबा पर था। सुनीता राव का जन्म जर्मनी में हुआ था, परंतु उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई में पूरी की। धुआं एल्बम के ऑडियो और वीडियो ने सुनीता को घर घर में मशहूर बना दिया। सुनीता राव ने भरतनाट्यम, जैज बैले, सालसा और फ्लमेंको नृत्यों की शिक्षा भी ली है। ग्लोबल वार्मिंग के विषय में जागरूकता लाने के लिए सुनीता राव ने गीत लिखे और गाए हैं अपनी एल्बम वादा करो में। चलिए अब उनका फेमस गीत परी हूं मैं सुनते हैं।

0: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
1: माना जाता है कि जैसे यूएसए के लिए ब्रिटनी स्पीयर्स हुआ करती थी, उसी तरह भारत के लिए अलीशा चिनॉय थी। इंडी एल्बम्स और हिंदी फिल्मों की गायिका के रूप में बहुत फेमस है अलीशा। क्वीन ऑफ इंडी पॉप के रूप में जाने जाने वाली अलीशा चिनॉय का मेड इन इंडिया वाला गीत आज भी काफी फेमस है। बप्पी लहरी ने अलीशा को हिंदी फिल्मों के प्लेबैक सिंगिंग में इंट्रोड्यूस किया था और दोनों ने मिलकर कई डिस्को हिट्स दिए हैं। क्या आपको पता है कि मिस्टर इंडिया का काटे नहीं कटते ये दिन ये रात वाला मादक गीत अलीशा की आवाज में है। बंटी और बबली फिल्म में कजरारे गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड पाया है अलीशा ने। चलिए अब सुनते हैं अलीशा का यह फेमस गीत मेड इन इंडिया एल्बम से।

इंडी पॉप की बात चले और दलेर मेहंदी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने अपने दमदार गीतों से पूरे विश्व में भांगड़ा को इतना पॉपुलर कर दिया। अपने डांस नंबर्स, अपनी पगड़ी और फ्लोइंग रोब्स के लिए मशहूर हैं दलेर मेहंदी। पटना के एक पंजाबी परिवार में जन्मे दलेर ने अपने भाइयों और कजिन्स और फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया। बोलो तारा रारा उनका पहला एल्बम था। इसकी लोकप्रियता ने न सिर्फ उन्हें पॉप स्टार बना दिया बल्कि कई अवार्ड्स भी दिला दिए। उनका दूसरा एल्बम दर्दी रब रब पहले एल्बम से भी ज्यादा पॉपुलर हुआ। तीसरा एल्बम बल्ले बल्ले मल्टी प्लैटिनम बन गया। मृत्युदाता फिल्म में अपने नाना नारे नारे वाले गीत के साथ अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर किया। चलिए अब दलेर मेहंदी जी का यह फेमस गीत सुनते हैं।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Station sponsor.
2: जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि अभी मलयाली दोस्तों के ओणम त्योहार का समय है. एलावरकुम ओणा शमसगल. ओणम की कहानी के अनुसार वामन के तीन पग स्थान को दान में मांगने के बाद तीसरा पग महाबली के सर पर रखकर पाताल लोक में भेजने से पहले विष्णु भगवान द्वारा पाए वरदान के अनुसार महाबली राजा जब साल में एक बार प्रजा को देखने आते हैं तो उस दिन उनके स्वागत में आंगन को फूलों से सजाना, घर को साफ सुथरा रखना, नहा धोकर पूजा पाठ करके नए वस्त्र पहनना, राजा को खिलाने के लिए महाभोज का आयोजन करना, बोट रेसेस और टग ऑफ वॉर जैसे गेम्स इवेंट्स को आयोजन करना, ट्रेडिशनल डांसेस करना, राजा को हर तरह खुशहाली दर्शाना, यही ओणम के दिन का मकसद है. इसे प्राचीन काल से सभी धर्मों के और जातियों के लोग एक साथ मनाते आए हैं. चलिए ओणम के अवसर पर यह मलयालम गीत सुनते हैं.

सभी मलयाली दोस्तों को एक बार फिर हैप्पी ओनम। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम को वाइंड अप करने का समय हो चला है। इंडी पॉप कलाकारों पर आधारित यह कार्यक्रम और गीत आपका मनोरंजन करने में सफल हुए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। अपने कमेंट्स और सजेशंस हम तक जरूर पहुंचाएं। मेरा नंबर है 0400907907। अगले महीने फिर मुलाकात होगी। आप अपना और परिवारजनों का ख्याल रखिए। इस महीने के सभी जन्मदिन और एनिवर्सरीज वाले दोस्तों को शुभकामनाएं। भारत के 80th इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त को था, आप सबको उसकी भी बधाइयां। तो आप सबकी मंगल कामना करते हुए आपकी आरजे मैं सीमा श्री कुमार अब आपसे आज्ञा लेती हूं। सीमा नाउ साइनिंग ऑफ। नमस्कार।